0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवादारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वो चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो आपका चेहरा खुश नुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान। कभी चेहरा मुड़ जाया हुआ, अगर आप मुड़ जाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना। ऐसे सभी तीवर पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

बच्चों की

आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, वो कितने दुआएं देंगे, और दुआएं लेना सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं, कर सकते हो तो करो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं, सफल करो। खजानों को सुनाया ना, मन सास से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, और बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना। सफल करो तो सफल करने से सफलता मूर्त बनी जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती, सीढ़ी का नहीं। समस्या आई मिटाया, कभी दो दिन लगाया, कभी दो घंटा लगाया, सीढ़ी चढ़ना है। दुआएं सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाएंगे जहां जाओ, चाहे सुखी वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज में पहुंचो, सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट का, बाप दादा तो कहते 1 सेकंड, 1 सेकंड।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सत्तर वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन और आलस और बहानेबाजी खेल देख लिया। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल खूब देख के बचोगे। जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाती?

0: leggenda. Capì, Piteco?
1: ये पाने पास ही हुई ना।

जो चार को हल्का कर देते तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ये नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे के नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे, वो तो 3-4 मास के बच्चे के।

0: Satyona Vishwa Kalyan Kariyo Usko to Sattar Varsh Pure Ho Re Hath Bap Dada Nahi Uthate Kyunki Bap Dada Ne Dekha Hath Utha Ke Bhi Kabhi Kabhi Alabele Ho Jate जो समझते हैं कुछ भी हो जाए बाहर जैसा पेपर भी आ जाए लेकिन बाहर को रुई बना देंगे ऐसा दृढ़ता की कमी हो जाती हो जाएगा चलता है चलने दो कौन बना है और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है बाप दादा ने नोट की है बातें अपने हिम्मत नहीं चलती ना तो कहते हैं महारथी भी ऐसे ही करते हैं हमने किया तो क्या हुआ लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय दूसरे को देखना सहज होता है अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए तो आज बाप दादा हिसाब लेने आए हैं लेकिन हिसाब कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब बहुत बड़ा किताब है उसको खत्म करना
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

see.

Assiette.

Sa

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: रिश्ता बनना वानेरा

इस मोटे रूप से

Eskilistö. Apos me. Sure.

0: संपर्क में।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: शोर इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक तो के नजदीक होने के कारण एक तो को सहयोग देना सहज हो जाता, तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा, चाहे सोन नाम अलग अलग है लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय

0: सभी सभी ने उठाया, हम सब एक है। ये तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके, इसके कारण सोन बने। बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक के रहेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है, दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते। बाप दादा तो सब किचना कहते हैं, किचना दे दो बस, अच्छी चीज नहीं तो किचना दे दो। कमजोरी कमी क्या है, किचना है ना, किचना कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। परिस्थिति ऐसी थी, परिस्थिति का नाम ही नहीं हुई लाने वाली। स्वस्थिति शक्तिशाली सभापति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे। रिश्ते चमक रहे, सभी बच्चे चमके हुए दिखाई दे। अभी इसीलिए पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं, पर्दा खोलो पर्दा खोलो। अपना आप ही प्लान बनाओ, जैसे प्यार 100% है वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता ये भी 100% हो, ज्यादा भले हो कम नहीं हो, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही हैं और फिर भी हम ही होंगे, ये निश्चय विजय बना दे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बाप दादा समझते हैं आज के इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता, कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? See?

0: परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदली करे, बदली करे, नहीं करे तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालते हैं, मंजूर है, बताए बताए। अच्छा, बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना, कुछ भी हो जाए। बाप दादा तो कहते हैं स्व से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैपन से मरना है। तो मरना भी पड़े इस जन्म राज भाग्य में जीना है। तो मंजूर है, मंजूर है टीचर्स। तो बाप दादा यही देखने चाहिए थे, समझा?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, ऐसे बच्चे भी देख रही है, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन दीवार पुरुषार्थ

0: Kusyarat, hin ke wayu mandal me. Nayakar, odokopi, omagot sa milaw. Shadat me takavat anbai hoti hai bab dada dekhte hai lekin soyab शरत पे तीवर रहने वाले औरों को भी शरत पे आगे बढ़ाओ जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से पढ़ते भी चले पढ़ाते भी चले क्योंकि एक दो के सबके प्रत शुभ भावना के आधार से बढ़ाते चलो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, वो मेरे बाबा, वो मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, मेरा संसार हो, बहुत मीठी मीठी बातें करते और दो चार घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ गया, बात नहीं आती भूत आता है। का भूत वाला भी फोटो है, देखो एक यादगार भी है भूतनाथ, तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहां से आया और कैसे पका रही है, ये खेल भी देखती रहती। कोई तो घबरा कर भी दिल शिकस्त भी हो जाते, फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको संजीवनी बूटी कोई द्वारा खिला के सुरजीत करे, लेकिन वो मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गमाना, थोड़ा रख, थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जितना प्यार है ना उतना साथ में, प्यार भी चाहिए शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति को बढ़ो, वायुमंडल बनाओ। एक दो किस सहयोगी बन, हर एक अपने अपने स्थान पर रहते हैं। स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ। तो क्या करेंगे अभी? नवीनता करेंगे ना। जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, अमृत वेले बाप दादा देखते हैं कि संकल्प अच्छे करते हो। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब कर्म योगी बनते हो संबंध संपर्क में आते हो उसमें फर्क हो जाता। कर्म योगी की स्थिति उसमें अटेंशन

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा सभी को ये देखना चाहते अभी अभी देखना चाहते कि एक सेकंड में स्वराज के सीट पर कंट्रोलिंग पावर रोलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। तो एक सेकंड में दो तीन मिनट के लिए राजाधिकारी की सीट पर सेट

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बेफिक्र मत चल।
4: बेफिक्र
3: फिक्र का था। अब कारण क्या है, बेफिक्र क्यों है,
4: कल क्या है, ये फिक्र क्यों है।
3: दिल बड़ी है। बेफिक्र क्यों है, क्योंकि दिल बड़ी है।
5: जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता है।
3: तो दिल बड़ी कैसे हुई है? बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबको राज भी करना है तो और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना, परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती।
4: जिम्मेवारी बाप

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे, जो भी आप चेहरे में देखे आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे, फलानी हो फलाना हो नहीं, इसके लिए

आपको खास कहां कहां से चुन करके अपना बना।

0: स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना फॉलो फादर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी भी कोई माया का संकल्प पियावे तो मन के विमान से शांतिवन में पहुंचा।

0: जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिए। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा बस चलाना आते है ना विमान। जब भी कुछ हो मधुबन में पहुंच जाओ, भक्ति मार्ग में चार धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं। और मधुबन में भी चार धाम है तो चार धाम किए
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए करते हो ना, ऐसे

0: जवाब टॉप की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान होते है ना, तो वहां खड़े हो जाओ। ऐसे आपके टॉप की स्टेज सबसे टॉप की है, परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की, और फिर टॉप की स्टेज पर आपके साथ आके बैठ जाऊं। जैसे थक जाती है ना, तो 5 मिनट भी का शांति से बैठ जाती है ना, तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे बीच बीच स्थान कौन सा है? संगम, बारा की सुई टाप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए सेवा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो आज से देखो सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, पीछे वाले हाथ हिलाओ। Son.

विश्व की बड़ी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शुभ भावना की शक्ति

0: Baby. Το χιλιάτρακο. Μοίρα καρταφιακιά. Τζέσι.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो आपको भी फोर्स से

उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वो गलती नहीं है? उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वो राइट है। क्या गलत गलत को ठीक कर सकते?

appreciate you.

Jesse Nickley. Jesse. Full on, you worship.

Oh, shit.

मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा सब।

0: साधन है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है आपकी कमजोरी, बिना बिना माया के रूप बन जाती, बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में खुश निमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखते हैं।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहते, एक शब्द है, सफल करो, सफल बनो, जो भी खजाने
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा यही चाहते हैं। कि हर एक स्वयं चेक करे, अगर कोई भी So

सर्व शक्तियों का वरदान दिए, सर्व गुणों का खजाना दिए। खजाने को यूज करने से खजाना पड़ता है, खजाना है सबके पास है। बाप दादा ने देखा है, हर एक स्टॉक को भी देखता है। स्टॉक रूम तो बाप दादा ने सबका देखा है, स्टॉक में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते। Yeah.

0: इतना सहज विधि सुनाई है, सिर्फ है संगम युग में बिंदी की कमाल, बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Satan. Santos René Valley. Santos Mario Go.

संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक

Ich

సంతుష్టంగా.

Say.

じゃあ、さんとして。

そっとした。キーステティ、バレステティケオバル、サダビデイ、バレステティ。

Yeah.

Chan. அந்த பக்கனை கேள்வியே அப்பனே

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

परिवर्तन

0: नहीं धारण करता तो आप इतनी अल्प में यहाँ पहुंच नहीं पाते क्यों? के वायुमंडल की प्रांतिया इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप जल्दे से जल्दे बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, देख रहे हो फास्ट गति हुई है या कम हुई है? फास्ट हुई है ना, तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब इस सेकंड में

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय डॉलर को, जय पाउंड को, है तो पेपर ही, तो पेपर कहां तो चलेगा। सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है। नहीं मिले तो भी आपके चेहरे

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी ने ध्यान से

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सदा दृढ़ता, सफलता की चाबी को संभाल के रखना, क्योंकि ये चाबी माया को भी बहुत प्यारी, इसीलिए दिल के डब्बी में इस चाबी को संभाल के रखना। दृढ़ता ही सफलता की चाबी, और सफलता पाप के समान बनने का सहज साधन। सदा निश्चय और निश्चित भावी है, स्वराज अधिकारी और विश्वराज अधिकारी, ये दोनों निश्चित है। ऐसे नशे में, फकर में सदा उड़ते रहो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वारिस की भाषा तो समझते हैं, समझते हैं ना, जो से मानसी सहयोग से सबसे नंबर वन हो और हर कार्य पे हर समय एवरेज हो, इसको कहा जाता है वारस। समय बुलावा आवे उस समय हाजिर हो जाए, इसको कहा जाता है वार्स क्वालिटी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पत्र लिखने शुरू कर देंगे, पापा best song.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप भी फ्रिस्टा ड्रेस जैसे बिना बिना ड्रेस बदली करते हो ना, वैसे बीच बीच में सारे दिन में ऐसे फ्रिस्टा ड्रेस बदली करके टेस्ट लो ये भी, बस बाप दादा इमर्ज करो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इमर्ज करो, मैं फ्रिस्टे रूप में हूँ। वस्त्र बदली किया साधारण से फ्रिस्टे रूप की ड्रेस पहनी और बाप दादा कभी ज्ञान के कभी शक्तियों के कभी गुणों के रंग डाल रहे फ्रिस्टा ड्रेस पे। फ्रिस्टा बन के 5-10 मिनट अनुभव करो, फिर वस्त्र बदली कर दो। कर्म योगी है ना, तो ये दिन में जब भी टाइम मिले फ्रिस्टे की ड्रेस पहन लो और बाप द्वारा ये रंग लग रहे ये अनुभव अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रिस्टा ड्रेस की, तो ड्रेस पहनने से नशा चलेगा और मदद मिलेगी फ्रिस्टा बनने में। तो होली के ये सौगात बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। ड्रेस पहनते ट्रेल करते जाना, बोलना नहीं, फ्रिस्टा ड्रेस सौगात में दे रहे हैं होली की सौगात। तो बीच बीच में ये अभ्यास करना, सहज है ना, ड्रेस बदलना तो आता है ना, आता है ना। जैसे ये ड्रेस बदलते हो ना, रोज बदलते हो ना, तो फ्रिस्टा ड्रेस भी बदल के देखो कितनी सुंदर कितनी चमकती हुई। सुना ये ट्रेल भूलना नहीं, वस्त्र बदली करना, दिल में जितना वार फ्रिस्टा ड्रेस में बैठ सको चाहे 3 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर, बदली करो जरूर, अभी से संस्कार डालो फ्रिस्टा बनने के बिना देवता बन नहीं सकते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yes.

So

0: સ્વરૂપ, પડના નહીં પડતા સ્વરૂપે પવિત્રતા. क्यों आप डबल पवित्र इतने महान बने हैं? क्यों आपको रंग कौन सा लगा? परमात्मा के संग का रंग तो जैसे परम आत्मा पवित्र, वो भी डबल पवित्र नहीं. आपका भाग्य है क्योंकि आप रहते ही परमात्मा के संग में हो. संग का रंग इतना पक्का रहता है जो डबल पवित्र बन जाता. होली करना आता है, जो हो चुका वो हो चुका. होली शब्द का अर्थ क्या निकलता? पीते सो पीती. इससे आप डबल होली 21 जन्म रहते हो, एक जन्म नहीं, क्योंकि संगम के एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों का है। यहां आपने अगर एक सेकंड या एक मिनट सफल किया तो 21 जन्म आपका सफल रहेगा। गारंटी ऐसी होली मनाई है। होली करना आता है, जो बीता वो बीत गया होली। और तीसरे रूपरेखा क्या करते हैं, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो आपने भी क्या किया, योग अग्नि से अपने कमजोरियों को, संस्कारों को जो अनेक जन्मों के उल्टे संस्कार है, उसको योग अग्नि से जलाया है ना, जलाया है कि अभी भी जला रहे हैं। जलाया है जो समझते हैं हमने योग अग्नि से अपने पहले के संस्कार जलाया है, जल गए, वो हाथ उठाओ, जल गए कि अभी भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा तो आते हैं। बाप दादा के पास जब अपना चार्ट भेजते हैं ना, तो कहते हैं बहुत तो चले गए, चतुर है ना कहने में, कहते बहुत तो खत्म हो गए, कभी कभी तो राय मर्ज हो जाता है। लेकिन चलना माना चलना, चलने के बाद नाम निशानी नहीं रहता, मारने के बाद शरीर यादगार तो दिखाई देता है ना, लेकिन चलने के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे रावण को भी देखो, सिर्फ जलाया, मारा नहीं, जलाया भी, जो बिल्कुल नाम निशान खत्म। तो आप भी सब अपने को नोट करो, संस्कारों को मारा है या चला है, पसंद किए। की सबकी है, आप चलाते हो वो भी चलाते हैं। फिर बनाते बिना चलाने के मनाते नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्रोग्राम तो बड़े किए उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000, लेकिन कम से कम बाप दादा इतने जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो, क्योंकि एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समय बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं काम ने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे बिना बिना सेंटर पर जाए। किस देश का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए, ठीक है ना? हो तो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे निकल आएंगे, 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे, कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते। कितने भी निकालो जरूर, क्या है प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ये संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन, सारे कल्प में एक ही बार होते। संगम युग में बार बार होती है, लेकिन एक ही संगम युग में होती है। और जीवन कितनी सरल है, कोई हठ योग क्रिया विरिया नहीं करनी है, मेरा बाबा बस। अब मेरा तो भूलता मुश्किल ही है, बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। छोटी सी चीज भी मेरी होती है तो कितनी याद रहती है। बाप को भी हर बच्चा प्यारा है, ऐसे नहीं इतने बच्चे पता नहीं मुझे बाबा याद करते हैं या नहीं, लेकिन नहीं, बाप विश्व का पिता है, उसमें भी मुख्य संबंध में कौन है? आप बच्चे। एक है कितना प्यारा है, आप कहते हैं प्यारा बाबा, बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे। एक एक बच्चा बाप दादा के दिल का प्यारा है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के गर्भों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ के गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट में क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न, जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है, इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता, क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रही, फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया, समझने लगे हैं किस में मेरे कोई नुकसान है, समझा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सफल करो और सफल

0: Isidie himmat med rena har himmat delarna. Kjok teachers ko
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

ciao.

Tila.

लक्ष्य रख।

con ojo, Bill.

cordero.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हाथ इसीलिए उठाते हैं, अभी जैसे एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना। कोई समस्या आई तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हासिल हो जाएगा, समस्या खत्म। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिवान अपना टाइटल हर समय याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, आर्डर करो। हर शक्ति को समय पर आर्डर करो, वैसे शक्तियां धारण करते भी हो है भी, लेकिन सब कमी ये हो जाती है कि समय पर यूज नहीं। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। जैसे इस कर्म इंद्रियों को आर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को आर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। आके रखते हो कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे? बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे, थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं?
2: रहना अमर भव का वरदान का।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: नेचुरल अभ्यास हो जाए।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: लेकिन इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं।

0: takkan di tengah kali. Warnai suci.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: उठाने से आपको ये याद उठाना भी मदद।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना, आप भी जानते हो और आप कोई इस प्यार का
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: देखो फायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, फायदे का फायदा नहीं उठाते हो। फायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो। फायदे को रोज रिवाइज करो। क्या वायदा किया? अमृत वेले मिलने के बाद फायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। फायदा क्या किया और फायदा क्या उठा रही है, रियलाइज करो, रिवाइज करो, बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाए। इतने सब फायदा और फायदा उठाने वाले ही है। आपका निमित्त भाव औरों को भी सहयोग देगा। बार बार रियलाइज करना, दिल से रियलाइज करना, क्या करना है क्या नहीं करना। नाक को 21 जन्म के लिए ऑटोमेटिक गवर्नमेंट की सील लगा देना और हाजी हाजी करते रहना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। इतने अथॉरिटी बाप द्वारा मिली हुई है। पहले कोई भी संकल्प बोल कर्म करने के पहले बाप समान है या नहीं ये चेक करो, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जब आपका विवेक हाँ करे हाजी, प्रैक्टिकल में ला। समान बनना है तो समान करना भी है, चलना भी है। बाप दादा तो हर बच्चे को
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: शिव के ऊपर अक के फूली चढ़ते तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे तो ये क्रोध का अक का फूल अर्थात बाप को दे।

0: हिम्मत कभी नहीं हार। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, पढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है कहते हो ना, साथ है नहीं कहते हो, कंबाइंड। ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो, बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे नंबर वन हो। दी हुई चीज अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में ख्यानत है, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

हार खाने वाले

Blessed.

0: essa verdade.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

चाहते हैं।

Shit.

ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಪನೆ ತಿಳ್ಬೇಕು. Let's go check.

koi na koi. Oh, God.

संकल्प सामने लाना। और रोज हम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज क्या संकल्प किया? बनना ही है ब्रह्मा बाप समान, बनना ही बनना है, नहीं बनना ही है। कोई भी बातें है, बात के बजाय बाप को आगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले खजाने के 3 खाते जमा करो, ये पहले बताए तो रिसर्च

Yeah.

जमा करने का

Freddy. A baby. Dikhai denge. Sabke sansar sanskar. Abhi sampan nahi hue. मास्टर सर्वशक्तिवान कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है, मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप सबकी दादी निमित बने ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित पालना के ऑटोमेटिक याद निकलती। तो जैसे दादी ने बाप दादा की तो बात शुरू, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखाए। सबसे बड़ा पेपर दादी ने अव्यक्त बाप होने की टाइम दिया, ऐसे वायुमंडल अचानक और इतनी हिम्मत रख और सभी को मददगार बनाना, ये तो कमाल की। भले साथ दिया लेकिन निमित्त तो बने। दादी की विशेषता क्या रही? दिल साफ, मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं रही और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया। अलबेला है छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। वो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी।
2: भाइयों को बुला रहे हैं।
1: दिल से कहते हैं ना सभी मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ जो लक्ष्य रखे, दादी चलो बाप समान तो बनना ही है, लेकिन कम से कम दादी के समान पास ना दे। ग्रुप चाहिए एक नहीं, एक दो के साथी बन। ऐसा वर्तक के स्वरूप देख फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप सदा बच्चों को कहती है, कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ जाती, नजदीक भी नहीं आ सकती।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: चल।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो का दूर भी बैठे हो, कर सकेंगे, टच होगा, ये करना है ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है तो वर्तमान समय

जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ है, जहां जाओ जब तक जाओ तब तक आर्डर से चला सकते हो। ऐसे ऐसे नहीं, योग के समय अनुभव होता है लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अच्छा।

0: उसकी शक्ति की विचार परिवर्तन करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को अशांति और

जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा

विश्व की आत्माओं के निमित्त है। ये स्मृति रहती है, सारे विश्व की आत्माओं को सेवा याद आती है। वह अपने सेंटर्स की सेवा

इसे नशे से

0: ऐसे समझते हो, ऐसा नशा है नशा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Mamá.

Oh, I never knew.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कम से कम बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि इन 6 मास में जो बाप से कम छह मास में अपने को जीवन मुक्त मुक्ति नहीं संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज कोई भी विघ्न परिस्थिति मुक्त हो सकता।

0: 养鸡哦，那根本的呢？
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा और पत्नी चारों ओर के बच्चों को देख

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो भी कमी है उसमें सहयोग दो, मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पहले बारी आई हो तो कमाल करो, क्या कमाल करो। ऐसे भी निकलने हैं तो आप ही दिखाओ। बाप दादा की मदद सभी को है, दीवार पुरुषार्थ आने से ही साधारण पुरुषार्थ नहीं, दीवार पुरुषार्थ करो। करना ही है, बनना ही है, आगे जाना ही है, ये दृढ़

कोई एग्जाम्पल निकलने में।

così è. Chissà me si belle tu anche.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे, अपने शरीर को भी

0: recipe. Ek minute. Nikal. Is abhyas ko. Pakka kar deje.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

menneske. Så med.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्रह्मन परिवार सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा भी, जो बाप दादा ने कहा वो हर एक एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो, बहाने बाजी आलस अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत संकल्प स्वरूप में सभी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहती है ना, तो उस समय पर शक्ति नहीं आती। वैसी शक्ति है, लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना, तो भी नहीं आती। है मास्टर सर्वशक्तिमान, टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्ति। मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सीट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो अथॉरिटी करने वाले को होगी वो ऑर्डर करेगा, तो मानते हैं ना। ऐसे दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान, उस सीट पर सीट नहीं होते। तो आह्वान करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है, अपने मन को बिजी रखो, कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे अपने सीट पर से,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी बच्चों को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। बच्चे सब

तब तो याद करते।

इसमें अटेंशन देना है, इसके हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही ये बाबा शब्द याद कर, पाप देख

वहां शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं,

कुछ भी बात हो जाए, आई और गई, आप क्यों उसको पकड़ लेते हो? कोई बात ठहरती नहीं है, चली जाती है, आप क्यों पकड़ लेते हो? तो कल से रोज़

0: svangerskapet jag drack. Agar kabhi mood off hota, svangerskapet jag drack.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
0: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्राह्मण परिवार का अर्थ है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का सब कुछ हो गया। बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है, चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक। परिवार भी सभी को कई बातों में मस्त

0: Glassrobe. Faretti. Escalladgar. Ixo.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: See,

Sure.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Fuck.

0: Lekin अब सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना, अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्कर लगा के चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाइए ना, बाप दादा खुश है। लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और चाहिए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सके। अभी कर ली सो कर ली, उस समय फ्रिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम में आना और अचानक होना, इसका अभ्यास अगर सेवा भी की लेकिन इसका अभ्यास कम होगा। सेवा में ही लगे रहे, सेवा में लगना है लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहे कि अचानक होना है और ऐसी सरकमटेंस में होना है, इसीलिए बाप लेना कोई नहीं थे कि आपने बताया नहीं। बार बार बिना बिना इशारे दे रहे, सेवा का फल मिलता है, सेवा की मार्क्स, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है ना, तो सेवा की सब्जेक्ट की मार्क्स मिलेंगी लेकिन और 3 सब्जेक्ट। अगर 1 सब्जेक्ट में आपने मार्क्स ले ली और 3 में कम ली तो नंबर क्या मिलेगा? 4 ही में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। ये बाप दादा की हर बच्चों के प्रति शुभ आशय।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग अशांति हलचल बढ़नी है, इसलिए अपने आप एक रखिए एक परिवार। उसके परमान जब एक परिवार तो अशांत आत्माओं को कुछ तो चली देंगे। जो आया किया है

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आती माला भी रुकी हुई? ब्रह्मा बाप ने कहा, चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया के मर्ज कर दी गई, जैसे आपके सोन है ना, तो ऐसे एक एक सोन नहीं, सोन तो बहुत बड़ी बड़ी है ना, एक एक विशेष देश इमर्ज कर दी गई और सबकी चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता, अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे और माला तैयार हो जाएंगे। कौन सी विशेषता? तो यही कहा

0: Demek sonucunda İskin abim avuçlarım Çetin nasip abim Akı partiyem Otunay Fırtime Tristime Bolme Çalme
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: औरों की सेवा की बहुत बहुत बहुत बहुत आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नासिक जैसे आप ही अनुभव करती है ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे
4: ऐसे।

बहुत जरूर कर रहा हूँ।

appreciate. Guardian. Yo.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहिए।

Vístete. Ya es.

जिस पाप

से कोई बच्चों को काका से चुनकर अपना बना लिया। पांची खंडों से बच्चों

nak.

Shut up.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सक्सेसफुल कभी भी क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे
2: पीछे ही है
1: इससे इस सच कमजोर चाल को समाप्त करो। फंसो नहीं लेकिन समाप्त करो। है शक्ति है समाप्त। इस जाल में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल। विजय मेरा बर्थ राइट है। सफलता मेरा बर्थ राइट है। ये परमात्म बर्थ राइट है। इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त सहज और सुतः रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे खाली तो नहीं रहती ना, तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठने की जगह तो कि नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम। बेहद बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि अटेंशन कम होते हैं, सेवा में ज्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा उसमें हाथ आ जाती है, वो प्रवृत्ति नहीं होती। नाम और मान पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृद्धि कम हो जाती। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई मेरे बच्चे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप लोग छोड़ने में तो जय भाई जय बहने जो बीने में थे विशेष परिवार निर्विघ्न हो उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी करते हो, लेकिन खास परिवार के उन्नति के लिए और यज्ञ की कारोबार आगे आगे बढ़ते जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना। कोई भी सरकमटेंस वो सभी के योग से सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी हो।
2: यूथ विंग के लिए भी 1 करोड़ की एप्लीकेशन दिया हुआ है।
1: अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाएगा। सोचेंगे ना ये करूं नहीं करूं नहीं करूं करूं मैं टाइम नहीं। आजकल समय अगर आप सभी शुभ भावना एक संकल्प रखो होना ही है, हो सकता है। ये वरदान है, दिल बड़ी और कायदे सिर भी और दिल बड़ी भी। सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा को सभी का एक ही संकल्प होना है। क्यों क्या नहीं होना ही, तो इस विधि से सब सहज होता है।
2: सोनीपत की भी 2 दिन के बाद डेट है कोर्ट में, भी हो जाए।
1: बस 10 मिनट आप सपने में बने हुई आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है, सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बीमारी को बढ़ा देती क्यों?

ರೆಡ್ಡಿ, ಭೀಮಾಲ್ಕಾಯ ಸಾಕಿದ ಜುತ್ತುಗು ಕಣ್ಣಾಗ ಕರೆಯ 50%

0: नहीं लगना चाहिए। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। और क्या होता है ये पार्ट पक्का हो जाता है ना, मैं बीमार हूँ तो कभी कभी होते नहीं है। मानो कमर में दर्द है, मेजॉरिटी को होते एक टांग दर्द, एक कमर का दर्द। तो कभी कभी नहीं, लेकिन मन में खुशी नहीं है ना, तो बहाना करेंगे मेरे को कमर दर्द।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज चारों ओर की सर्वश्रेष्ठ जैसे

0: es a ti. Abbi. Master. Great grandfather. Purvaj Atmauka. Kitna swaman. Us nashe mein rehte ho. Sare vishw ki atmao se chahe kisi bhi dharm ki atma hai. लेकिन सर्व आत्माओं की आप तन्ना के रूप में आधार मूरत पूर्वजो इसीलिए होने के कारण पूछे भी हो पूर्वज द्वारा हर आत्माओं को सकाश मिलती रहती पूर्वज का कार्य क्या होता है पूर्वजों का कार्य
1: चाहत मांगे पा आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बिजनेस वाले हाथ उठाओ, ये सब बिजनेस बिजनेस वाले क्या सोचते हैं, खास आपको चांस मिला है। बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ, श्रम खुद किया वो तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेस मैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है क्या होगा, तो उन्हों को चिंता से हटाए अपना शीख खजाने सुनाओ। जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपने हम एजेंट्स कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों को चिंता है क्या होगा कैसे होगा, है चिंता? हाँ नहीं है तो हाथ उठाओ। अच्छा नहीं है चिंता, कल कुछ हो जाए तो आपको फिक्र हो, बेफिक्र हो के तोड़ने वाला भी बच जाएगा, और फिक्र में होगे निर्णय ठीक नहीं होगा तो एक दिन में क्या से क्या बन जाते, ये तो जानते ही हो। बेफिक्र होंगे, निर्णय अच्छा होगा और बच जाए, टचिंग होगी, अभी समय अनुसार ये करे या नहीं करे, इसीलिए फिक्र मारना, बिजनेस भी करना और अपनी स्थिति भी करना। तो सदैव ये याद रखो, बेफिक्र बात जाए, फिक्र की बात भी बदल जाए। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं, हिम्मत से बाप की मदद मिलती रही। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं, हिम्मत ही के मददगार नहीं। आप सोचेंगे बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले ये सोचो हिम्मत है, हिम्मत बच्चे की मदद बाप की। आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी, दिल शिकस्त ना होकर हिम्मत रखते चलो तो मदद

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए हैं उन आत्माओं की विशेष
3: आ नहीं सकते।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई का खेल होता है ना, देखा है क्या? देखा है या बच्चे करके दिखाते हैं, तो सब समझो कि ये का खेल रही है। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साक्षी होगा खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं, कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बातें ऐसे होती है जो अज्ञान काल में नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान के बाद होगी। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, अज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, ज्ञान छोड़ते हैं, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए समझो, तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियां के अनुभवी बना। एक सहन शक्ति, न्यारपन, नष्ट हुआ, और दूसरा सामना करने की शक्ति का ये कि आगे के लिए आप सीख लो। तो ये परिस्थिति, ये तो पाठ पढ़ाने आई है। घबराते हो ना, समझ जाती है कि ये कमरा तो है, मारो अच्छी तरह से।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

पावरफुल होना चाहिए, जो जो भी ये भी आते हैं या साधारण आते हैं ऐसे।

c'est ça.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Sigh.

So

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्यों कि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाएं। देखो कोई रंग बिरंग की तो है ना, ये तो एक कलयुग की लास्ट का ये फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाती, अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती। और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति पर रही है, उस स्मृति में कहेंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएंगे, खुशी दिलाएंगे तो बस दो तीन दिन में दवाई से ठीक हो जाए। कभी भी दवाई या आजकल के तो बहुत नए फैशन है, कलयुग में सबसे ज्यादा है इन्वेंशन आजकल या अलग अलग थेरेपी कहते हैं, आज फलानी थेरेपी है आज फलानी, तो ये कलयुग का सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस बीमारी कॉन्शियस होके नहीं, तन में तो देखेगा और वो तो नहीं है, ये नहीं बात नहीं है, इसीलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। आई उसको फ्रूट तो खिला दो और विदाई दो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर पापा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो सदा खुश रहती है वो हाथ उठाओ, सदा खुश खुश रहती है, खुशी तो रहती है ना, खुशी तो है ना, खुशी तो नहीं जाती, खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी परमात्म गिफ्ट है, परमात्म गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। बात बात में हो गई खुशी क्यों जावे, बात पावरफुल है कि खुशी परमात्म गिफ्ट। तो ये भी कोशिश करो खुशी नहीं जाए, सदा फेस खुश दे मारे, खुश दे मां रह सकती है, खुशी रह सकती है, रह सकती है, कांधे लाओ, रह सकती है, अटेंशन देंगे तो हो जाएंगी ना, हो जाएंगी, हो जाएंगी, पीछे वाले, पीछे वाले हो जाएंगे। तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे, एक मास के बाद सभी से ये चार्ट मंगाएंगे कि एक ही मास खुश रहा। आज की तारीख याद करना, सभी को कह रही है, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं। एक मास की ट्रायल करो, कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना, समझना बात राइट है रॉन्ग है क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समा, दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती। समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा। तो एक मास का पेपर है ये, खुश रहना है, हो सकता है अलबेला बन छोड़ो, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं करना ही है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि समय आप ब्रह्मांडों के रोकने से रुका हुआ है। समय को समीप लाने वाले आप, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो, तो हो जाएंगे। रोज ये गीत याद करो, आप घर चलना है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चैलेंज

Hey, bud.

बच्चे सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन तपस्या तप के रूप में नहीं करते। प्यार से याद जरूर करते हैं, रोहण भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगा, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार पसंद करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ, जितना समय एकाग्र होने जाओ, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और पसंद, इसको कहा जाता है योग अगर समापन। मारने में फिर भी लाश तो रहते है ना, बस होने के बाद नाम निशान कदम। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने जाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान आर्डर करो, समाप्त करने की शक्ति आपके आर्डर से नहीं माने ये हो नहीं सकता।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा तने माना, तने जो भी है it up.

media अर्थात आपके पास Yeah, but my.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

अच्छा,

Steve.

और परिवार को देख तो लिया, बाप दादा समझते कि आप चाहिए सबा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कल से नहीं, आज से, अभी से, सारे दिन में दोनों बाप से प्यार, तो कभी अपने को निराकार बाप समान, निराकारी स्थिति में अभ्यास करो। फॉलो फादर, और कभी फरिश्ता बनकर साकार रूप भ्रमण नहीं, भ्रमण तो हो ही, लेकिन फरिश्ता रूप पर कर्म भले करो, लेकिन कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में रहो, तो कर्म का बोझ प्रभाव नहीं डालेगा। ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो ब्रह्मा बाप ने कर्म सब किया, निमित्त बना, लेकिन कितना बोझ था ब्रह्मा बाप के ऊपर। आप कोई के ऊपर इतना बोझ नहीं है, है कोई ब्रह्मा बाप से ज्यादा किसके ऊपर बोझ है, जिम्मेवारी है, वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता। तो ब्रह्मा बाप ने इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्य में कैसे रहा, कर्म में भी फरिश्ता रूप रहा ना। तो आपका भी ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो कभी फरिश्ता रूप में रहो, कभी निराकार स्थिति में रहो। ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कह के ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ, और शिव निराकार बाप को याद कर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये कर सकते हो, कर सकते हो कि मुश्किल है, जो कर सकती है बीच बीच में, बीच बीच में ऐसे करें जो लगातार हो जाए। ये अपने कर्म के हिसाब से जो आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से फिक्स करो। कम से कम सारे दिन में 12 बारी फरिश्ता बनो, 12 बारी निराकार स्थिति में स्थित रहो। ये कर सकते हो, हाथ उठाओ, कर सकते हो, मुश्किल नहीं है ना, नहीं, सहज है ना, सहज है, सहज में हाथ उठाओ, सहज है। अच्छा, करना है, करना है, ये पक्का करो, फिर तो जो लक्ष्य रखे है ना इस सीजन के अंत तक परिवर्तन हो सकता है। अगर ये ड्रिल 24 टाइम करेंगे तो लगातार हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ, हो सकता है, हो सकता है। फिर तो बाप दादा की तरफ से

0: के बिना आप भक्ति में जा नहीं सकते, तो इनों को मुक्त करो, क्योंकि पाप आए हैं ना तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना, आपको जीवन भक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना, उनको भी वर्षा तो देना है ना, तो उनों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए ये ड्रिल करो, 24 वाली, 24 घंटे है, रात और दिन के 24 घंटे है, और 24 बार करना नींद, नींद के टाइम नींद भले करो, बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो, लेकिन दिन में भराओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक सेकंड में चारों ओर हलचल है, सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है, व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर इस सृष्टि पर तो चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही व अशरीरी that's

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल, आप मर्सीफुल देव देविया और देवताएं हो ना हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Pippin.

तवक्कुल छोड़ के फिक्र में आ जाते।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा चाहते हैं एक एक बच्चा खुश नेमा खुश नसीब दिखाई दे चेहरे से चलन से क्योंकि इसके लिए बाप दादा चाहते हैं कि अभी से लक्ष्य रखो, जैसे अभी ये 75 वर्ष के कारण सबको उमंग
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी sleep।

सच्चाई होगी ना, उसको पाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों, पाप भी सत्य है ना, तो सत्य पाप की याद जो सत्य।

0: इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को ये सेवा की आवश्यकता है, जो चेहरी से नैनों से दो शब्द से हर आत्मा की दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाए, इसलिए खुश ने माँ चेरी या खुश ने माँ मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती। कितना भी कोई

0: बड़ी बर्तन कर ले, आज मन्ना की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वो अल्पकाल के साधन, और आपकी है सदा काल सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, और वाले की कमाल है परमात्म आत्माओं की। ये शिवा समय प्रत समय जितना अल्पकाल साधनों से भी परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उनको सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप है ये खुश नसीब।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सिर्फ एक बात याद रखना, ऐसे नहीं हो कि सेवा और स्वोन्नति में बैलेंस में अंतर नहीं है। प्लान प्रैक्टिकल में करने के बाद ये नहीं कहना तो सर्विस में बिजी हो गए ना, इसीलिए स्वोन्नति में अंतर आ गया, ये नहीं कहना। दोनों का बैलेंस सदा रहना। क्यों? दूसरों की सेवा करो और स्व की सेवा नहीं, तो ये अच्छा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसे वो माइक वाला जिसकी आवाज पे ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज में ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वो जिसकी आवाज में ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो किसी भी रीति से बेहतर को
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Nate.

sleep.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

счет будет. Свикарный карне. Тут тридцать. Transparent.

above.

0: अशुद्ध भावना मिटा नहीं सकते, हर आत्मा के प्रेत दिल का सने योग अपने मन में नहीं रख सकते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।